0: It's 17 minutes past 5 o'clock, Uptown Funk. Bruno Mars on Lotus FM. It is the drive-by, the best way to fuel up. It's time for the Daily Scoop. The Daily Scoop. Now, the trailer of Vibe starring Kunal Kemu and Preeti Zinta is out. It's been released and it promises plenty of chaos, eccentric characters and laughs. The 2-minute 44-second trailer introduces Kemu as Hardik, not the cricketer now, as unemployed, middle-aged slacker, desperate to stay young, while Sparsh Srivastava plays his sensible best friend, Bugs. A cool name for a friend, Bugs. Well, their ordinary lives take an unexpected turn when they accidentally stumble upon a national security threat. Serious stuff here, right? Completely out of their depth, the pair are recruited and trained as accidental spies by Madam H, played by Preeti Zinta.
1: We have a terrorist situation. Intel is strong, ma'am. It's Abu Al-Sayyid.
2: H, use any department, but results at any cost.
1: We're on it.
3: इस वक्त तुम हमारी और उनकी दोनों की तरफ से घातक परिस्थिति में
4: क्या कर दिया यार भैया
1: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे इस देश को तुम्हारी जरूरत है
5: इसकी माँ का पूरी दुनिया बैंकॉक लेने जाती है हम लोग देने जा रहे जान
6: अलग ही लाइफ अलग ही
3: तुम वायर पहन कर जाओगे
5: लेकिन सर मैं नॉर्मल कपड़े पहन कर ही जाता हूँ ये वायर पहन के जाऊंगा ना तो बहुत अजीब लगूंगा
1: वायर मतलब माइक पहन के जाना है इलेक्ट्रिकल वायर में क्यों लपेट के भेजेंगे तुम्हें दिस इज द वाइब वाइब वाइब
0: Yeah, remember, V is for Vibe, and it hits cinemas Friday, 18 September. Are you excited to see Preeti Zinta back on the big screen in comedy? Tell us.
7: Drop us a message on 071-613-7803.

मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे. यू नो आई कैन एक्चुअली लिसन टू दिस ऑलमोस्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. जारे पण जो कोई मने एम के कई कई गुजराती म्यूजिक सांभळवू छे इच्छा छे एंड आ सॉन्ग छे तो हूँ लगभग मारो जवाब एवो ज आवे के हा सांभळे चलो मोर बनी थन गाट करे. इट्स दैट आई लव इट सो मच. आशा करू जो आप सौने पसंद आव्यो छे. हमणा गीत अने संगीतनी आ माळा समाप्त थाय एने खूब ज थोड़ो समय बच्यो छे तो हूँ आशा करू छू के आपणे एनो पूरतो उपयोग करे. बट जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, न्यूज कमिंग अप ऑन टॉप ऑफ दी आवर, देर आफ्टर फॉलोड बाय अवर टॉक शो बिट्वीन 7 and 9. तो जरूर एमां भाग लेशो. हमणा आजना दिवसनो आवतो गीत मारो सोनानो ખડુલો.

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जगह है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।